तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिनका क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सच जान जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंगी आईया सत परमल तनवास ता मुख हो वे उजला लख दाती इक दात दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाव गुर सर सागर बोहे तो गुर तीरथ दरियाओ जे किस पावे।

सत सच मिले सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरु बचनी पौ खाए नानक सच्चा।

विचार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, तिद दिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

कहाओ। आप सुजान ना फुल्लई सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार, आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कहा पाना नाल कपूर। जे तन कंतना भावई ता सब अडम्बर कूर, सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द ना पेगी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक

निरोध कर्म मिले सच पाय है गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार है सच मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए श्री राग महला पहला तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर

ਕਿਆ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੁਸ ਮਾਹੇ ਪੰਚ ਪੂਤ ਸਚ ਪੈਰ ਅਤੇ ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ।

ओ वे परवाह अतोलवा गुरमत की मत सार लक्ष सियाणप जे करे लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन रात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेवी।

सो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रगाशया अमृत पया अघाए, नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल, मन सच कसवटी ला

कूड़ न पावै, सच रते सच भाए, साकत सच न भावै, कूड़े कूड़ी पाए, सच रते गुर मेले सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवै, जे पवै दिसंतर देश, अंतर मैल ना

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेत्यो, सो पाव जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस

कैसी वस्त्र विसाई है, जैसी निभ नाल अग्गै साओ सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर

तिन हर गुर दर्स न होए, खोटे जात न पत है खोट न सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रखिया।

पाने मन के शान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगल काल त्र माता तेरे हो है ना अंक सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे होए त्याई जब तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसे मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासुरो संग रे तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरम्परो चीने कह नानक इव एक तारे

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पा

जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाये चूके मुह प्यास हर सेती मन गबरया कर ही मन उदास जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहारे जास नानक नदरी पाये सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बो पेश कर परमाये मन हृदय कपट कमाए हर का मेल न पावे मर गुस्ता माए समाए मन रे ग्रेही माए उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए परगास राव गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए हर का नाम त्याए सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए बिन सतगुरु सुख न पावे फिर से जोनी पाए हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिर फिरे ओ ना तिल ना तमाए जो प्रभ पावे सोचिए अवर न करना जाए जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

आए जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी परम दे परम परम होए खुआर।

सेवा पवै सब थाए, पारस परसे पारस होए, ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

कालाए सच हर पाया गुण तास, शब्द रते से निर्मले हौ सद बलिहार जास, हृदय जिन कह हर वसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिन को लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए। रहाओ हर संतो देखो नदर कर, निकट वसै परपूर, गुरमत जिनी पछाणिया से देखें सदा हदूर। जिन गुण तिन सद मन

आए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल न उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है।

मन मुख मोहे व्यापिया बैराग उदासी न होए, शब्द न चीने सदा दुख हर दरगे पथ होए। हों मैं गुरमुख होइए नाम रते सुख होए, मेरे मन एनस पूर रही नित आशा सतगुर सेव मोह।

गुर प्रसादी मन वसे हों मैं दूर करे एहो मन ताव तां रहे जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चान।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना साचे शब्द मिलाओ रहाओ जिनी नाम पछाणिया तिन विटों बल जाओ आप छोड़ चरनी लगा।

सहाय। लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए। बिन गुरु महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए। ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए। असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए। जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए। एहो सहसा मूले

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की

पाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है, बिरथा जन्म गवाए।

आए देख कुटुंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिसदी कीम न पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत वचन है कर कृपा मन वसाई नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई श्री राग महला तीजा तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाही है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी अवर न करना जाए मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार एनस हृदय रव रहे।

कथनी बदनी ना पाई हौ मैं विचों जाए सतगुर मिले सद पैर चै आप बसे मन आए पाई रे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे

पूरे शब्द समाए। आपे दे ता पाईए, होर करना किछु ना जाए। देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए। जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए। जात सत संजम

काया सादे उर तप करे विच्चों हो में न जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर के शब्द जीवत मरे हर नाम वसे मन आए। सुन मन मेरे पाच सत गुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुर ते मार्ग पाये चूके मोह गुबार शब्द मरे ता उदरे पाए मोख द्वार गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार एहो मनुआ अत सबल है छड़े ना किते उपाए दूजे पाए दुख।

पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुर पाईए विच्चों आप गवाए, अम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारनहार। मन मेरे सदा हर वेख

विचार। सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज विकार, आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार। तंदा तावत रह गए लागा साच प्यार, सच रते मुख उजले तित साचे दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम समाल तू गुर कह हेत अपार। श्री राज महला तीजा। किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए, नामे ही ते सुख पाइए।

न पछाण्यो सुपना गया विहाय सुन्ये कर का पाहुणा ज्यो आया त्यों जाए मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मो देसी जाए सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागो पाए नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पगत

मन तन शीतल सास स्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए साची भगत तासी है जा हर वसै मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज पा।

सच्ची वाणी हर पाए हर स्यो रह समाए रहाओ सच्ची भगति मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाए जिसनो कृपा करे रजाए संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे ले उन मिलाए आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए गुरमती हर पाए।

अवगुणवंती गुण को नहीं, बैन न मिले हदूर, मनमुख शब्द न जाने, अवगुण सो प्रभ दूर, जिन्नी सच पछाणिया, सच रते भरपूर, गुर शब्दी मन वेदिया, प्रभ मिलिया आप हदूर। आपे रंगन रंगियोन सबदे लयोन मिलाए, सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए, चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न पाए।

प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए, ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

पाए। अंदिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार। हर वर पायन कर अपने गुर कै हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार। सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे जा।

गुरमति नाम सलाहिए, दूजा अवर न कोए रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाई है, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर न कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू।

जग हों मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए, मल हों मैं तोती किवे ना उतरे, जे सो तीरथ ना आए, बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो में जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

नानक नाम ना विसरै सच्चे माए समाओ। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुरु हर प्रभ बुझिया गुरु जेवड अवर ना कोए, हों गुरु शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुबदे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे

ना हो जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास। तन वड़ पागिया जो आए मिले गुरु पास, जिना सतगुरु पुरख ना पेट्यो से पागहीन बस काल। ओए फिर जोन पवाईए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस न पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल। सतगुरु पुरख अमृत सर वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए। गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए। मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ। बिन सतगुर हर नाम न लब्बे लख कोटी कर्म कमाओ, बिन पागा सतगुर ना मिले कर बैठिया निकट नित पास। अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोतिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवा ना बोलनी हौं मल मल तो वां तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौं मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे शोभा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगे खुशिया करें, माने रंग अपार, बोध करें फुरमाइसी, वरते हुए अफार, करता चितना आवई मनमुख अंध गवार। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी पाये, कर्म प्राप्त होए रहाओ, कपड़ भोग लपटाया, सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक, किसी चित न पावही।

ना शोषण तुझे अनित, अहंकार करें अहंकारिया व्याप्या मन की मत, तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत, सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए, नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए। श्री राज महला पंजवा। मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया, छत्रतार बादशाहियां विच सहसे परिया, पाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया, रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पव आया, तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया, हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया, सबको वसगत कर लयोन बिन नामे खाक रलिया, कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया, गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया। श्री राग महला पंजवा। पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुग्ध अजान, सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान, सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान, प्राणी तू आया लाहा लेन लगा कित कु पकड़े।

तीजे चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चितना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिससे सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वै मत मेरे मन एक स्यों चित लाए एक बिन सब तंद है सब मिथ्या मो माए रहाओ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला करी जिस सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार बां पकड़ गुर का।

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराधनित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विस

जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए गुरपूरे पूरा भया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम से आए।

साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कट्टी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रब

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा।

पूरा सतगुरु जे मिले पाये शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ शरण।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिय आराधिय आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए आई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए

फिरै मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याए मन की लाए भ्रांत। गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात, सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखे सुने हदूर सद।

मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला करथा पिया अंतर जोत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे को।

मनमुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कित न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारी है।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग, रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद, संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद, अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान, दृष्ट तार मन तन वसे।

पास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा सदा साला ही है अंत न पारावार। परवदगार साला ही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख। मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवा। संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल। गुरपूरे ते पाइए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड़ अवर न कोए, दूजा छाओ ना पोस जाए गुर मेले सच सोए। रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहा समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए। कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जम दूर।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेई रणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारण है, जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दुखरित सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन एहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरुमुख कोई विरला, गत अविगत कछ नजर ना आया।

वंदन मुकुट संतो मेरी राखे ममता। पै कृपाल ठाकुर रहो आवन जाना, गुर मिल नानक पार ब्रह्म पछाणा। श्री राग महला पंजवा कर पहला, संत जना मिल पाया कटेड़ा जमकाल। सच्चा साहिब मन मुठा हुआ खसम दयाल, पूरा सतगुर पेटिया बिनस्या सब जंजाल। मेरे सतगुरा हो तुद विटो कुर्बान, तेरे दर्शन को बलिहारने तुस दिता अमृत नाम। रहाओ जिन तू सेलिया पाओ कर सही पुरख सुजान, तिना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान। गुरजे वरदाता को नहीं जिन दिता आत्मदान। आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाए, सच्चे सेती रतिया दरगह बैसन जाए। करते हथ वडियाइया पूरब लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक। सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध विवेक, सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीव है एक। श्री राग महला पंजवा, गुर परमेश्वर पूजिए संतन लाए प्यार। सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार, सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार। बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार, मेरे साजन हर हर नाम समाल।

साधु संगत मन वसै पूरन होवे काल रहाओ। गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए। गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोए। गुर करता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए। गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार। गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार। गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार। गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास। पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास। सतगुर सरणी आया बहुड़ नाही विनाश। हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा। संत जनो सुन पाई हो छूटन साचे नाए। गुर के चरण सरेवड़े तीरथ हर का नाम। आगे दरगह मनिए।

रहाओ। सतगुरु विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अन दिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुरजेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूर्व लिखिया से ही नाम ते आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोर खड़ी तकै।

माने नाओ साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए नित रवै सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख न जानी साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंक

को पूछो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचो मन महत तू, आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यों पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीत, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै सबद सलाहना, कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहेथा, आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू, सबद लंगावन हार, निडरिया डर जानिए, बाज गुरु गुबार, अस्थिर करता देखिए, होर केती आवे जाए, आपे निर्मल एक तू, होर बंदी तंदे पाए, गुर राखे से उबरे, साचे स्यों लिवलाए। हर जियो सबद पछाणिए, सांच रते गुरवाक, तितन मैल ना लग गई, सच कर जिस ओताक, नजर करे सच पाई है, बिन नावे क्या साक, जिन्नी सच पछाणिया।

साची दरगह बैसई भगत सच्ची अरदास पत स्यों लेखा निबड़े राम नाम परगास। ऊंचा ऊंचो आखिए कहो ना देखिया जाए जै देखा तह एक तू सतगुर दिया दिखाए ज्योत निरंतर।

ज्यों जल सोड़े मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार। ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार, आव

चार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख वखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास पुन दान चंगियाइया बिन साचे क्या तास जे हारा दे ते हा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुणदासी सुख होए अवगण त्याग समाये गुरमत पूरा सोए रहाओ विन राशि वापारिया तके कुंडाचार मूल न बुझे अपना वस्त्र ही कारबार विन वखर दुख अगला।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पा।

एक निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कसवटी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर ना पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोई। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन फूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग,

मत पत सावा तिस तिसके संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवउ बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ, गुरु जिना का अंधुला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ, बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत, हों गुर पूछो आपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारिय सब जिया का आधार, शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाय हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार, सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोई, श्री राग महला पहला, बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सह सिंगार, सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार, सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रव रहे ना तिस काल संताए, साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए, कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरि आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाईए पय किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हौं मैं ममता जल बलो।

हमें मैल न जाए। सो हम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मिलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे बिछड़ चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत फुले फुलाइए फूली थौर न काए। गुरु बिन को ना दिखावे अंधी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहाजनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोला।

जिन तन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंगन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी

ऊंचा आखिया नीच ना दूसै कोय। इकने पांडे साजिया इक चानन किहो लोए। कर्म मिले सच पाइए थुर बख्श ना मेटै कोय। साध मिले साधु जने संतोख वसै गुर पाए। अकथ कथा विचारिय जे सतगुर माहि समाए। ई अमृत संतोखिया।

जिस हर गुर दर्श न होए, जो सुपने निस्फुली है जब लग निद्रा होए, क्यों सरपन के वस जीड़ा अंतर हो में दोए, गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोए, अग्न मरे जल पाई है ज्यो बारिक दूध माए, दिन जल कमल सो नाती है दिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर रस मिले जीवा हर गुण गाए, श्री राग महला पहला, डूंगर देख डरावनो पेयड़े डरियास, ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुर मेली तरियास, पाई रे पाव जल बिखम डराओ पूरा सतगुर रस मिले गुर तारे हर नाओ, रहाओ चला चला जे करी जाना चलन हार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार, ही सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार, हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल न चलिया खप खप

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल होवे कोई। हर जियो सच्चा।

जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस यो राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हो मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहार जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वल्याई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवे समाए, जे हर हर की चै बहुत लोची है किरत नाम ते आ जाए, हर का पाना भगती मनिया से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना कमाव दे दिखो मैं तज विकार। मन हाथे कितै उपाय ना छूटिए सिमरत सा

चरम पर आपत होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावना सच चुग गए गुरु पा।

खवाए। मनमुख उबे सुख गए, ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास न बहती है, ओना कर ना गिराओ, कटिया तै नित जालिए, ओना शब्द ना।

में सच समाओ। हुक्म ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाओ दे नित नित होए कुआर। अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार। सच्ची पगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए से परवान है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाओ दे नदरी बाहर न कोए, जैसी नजर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए। गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए, सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए, गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर निचल पाए ना ओ मरे न जाए। शब्द मिली न बिछड़े फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए। पाठ पड़े ना बुझई तेखी परम पुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए,

बिन शब्द परम न चूके न विचों हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए। शब्दे हो मैं मारिये माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए। भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर्षा लाहिये करम प्राप्त होए। श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

सेवन संग सतगुर सेवे हर मन वसै लगे न मैल पतंग रहाओ सच्चे शब्द पत उपजे सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हो तिन बलिहारे जाओ मन मुख सच न जाओ।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार, जम दरबदे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पै सतगुर शरणा, सतगुर सत दिलाया सदा सत संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजल करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई। पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट होई।

रोग, ग्रस्त पुतंग पलेतिया कदे हरख कदे सोग, गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोह वस्तिया किरपन लोभ प्यार, चारे किल विख उन अगतिये हुआ असुर सुंगार, पोथी गीत कवित किछे।

तीर्थ गमन करे, खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार, रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा, चित ना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाया साधन संग परीत,

एक लूक न देने दरसा, एक मन ही जाता काटना सिंह ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरचरण।

नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुध खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के नाहे जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले ऐ फल पाया जिन विच्चों ऐ करन चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्त।

सतगुरु मिले आ जानिए, जित मिले नाम वखानिए, सतगुरु बाज न पायो, सब छत्ती कर्म कमाए जियो। ओं सतगुरु विट्टो कुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड देश आजिया, अपने सेवक की तैग रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरज समारिया, कंठ लाए कह रखियो न लगे न पक्की वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छेड़ा फल पाया, सा पाप सा सिर खसम तू, जप नानक जी वै नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सच्चो सच वर्तदा, जिस पावे तिसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया, कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गो

हाँ, तिस जेवड अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छड़ा अम अब्बे थावो मिच्छड़ा तैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्कर हर बोल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिले इक पछाणदा दोया कागले चित ना जानदा हर इक तै पाणे लायो ने ज्यों पावे तिवें निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दी बाण कवाए तैनाइयो हौ होआ मा

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دڑایا

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंतकाल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन अखी आंदना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने नवैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही।

चोट न खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे न साके पाए भगत पै तरना पप खेती जावे सहल समावे

मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा जिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

तन चित वै तन संच वै वन जा रहा मित्रा, हर नामा हर ना समाल, हर नामा हर हर कदे ना समाल है, जे होवे अंत सखाई। त्यो तन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनो कृपा करे गुर मेले, सो हर हर नाम समाल, कहो नानक की जय पहरे प्राणी, से जाए मिले हर नाल। चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा, हर चलन वेला आदि, का से वो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा, सब चली रहन विहादी। हर से वो खिन खिन टिल मूल न करे हो, जित अस्थिर जुग जुग हो वो, हर से ती सद मानो रलिया, जन्म मरण दुख खो वो। गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो, जित मिल हर

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ ना।

ਪਾਣੀ ਅੰਕੇ ਹੋਏ ਸਖਾਈ ਇਹੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ।

गुरमुख हर हर सदा आए सैया विच फिरे सुहेली हर दरगे बहां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम।

अज्ञान अंधेरा कटिया, गुरु ज्ञान पर चंड बलाया, बलिया गुरु ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लादा, हो मैं रोग।

मुख नाम ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी। हर

गुण साध संग मिल जावे, नानक के स्वामी तार अनग्रो मंथन अंक समावे। दखना सोहंदड़ो हब ठाए कोई ना दिसे दूजड़ो, खुलड़े कपाट नानक सतगुर पेट ते, संत तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार बाणी विचार ये जियो, सिमरत सास गिरास पूर।

मन बांसत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व कैसा थे जप जुए जन्म ना।

जोन ना पावे नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकस स्वामी, सद कह जाए ना।

हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो, हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए, सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए, जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए, जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए, मैं हर दिन अवर न कोए, हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ, विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ, पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ, वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ गुरपुरे नाम दृढ़ाया, हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ, जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए, चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए, हों बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए, जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए, मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया, गुर सबदी पार लगाए रहाओ, हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले, हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के, हों बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है, मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पज पो, जिंदु सब किल विख दुख पर हरे रहाओ, कट कट रमैया मन वसे क्यों पाये कित पत, गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित, मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत, मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत, जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ, जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास, सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास, तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास, गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास, जन नानक गुर तिन पाया जिना आप सुखा गुणतास, हर त्यावो सांस गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा, हर नाम जिना रह रास रहाओ।

राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसे नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरु का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चे सतगुरु सेवे है सदा सच व्यापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत न होए इहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर इक सैदा है अमर इको हर चित तार हर किस बिन कोई ना है डर परम पौ दूर कर हर किसे नो साला है जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ

मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसवा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर। नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा। सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाणा। जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हों कुर्बाणा। तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हिरदे ही लिख ले हो। सदा साहिब कै रंग रहे कबू न कूटसने हो। कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए। नानक सह

मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विरसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता डरिए केत जिना नानक सच पछाण।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर सुदो बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग बिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार बिस्ता अंदर कीट से पे पचे वारो वार। नानक नाम रते से रंगुले गुर के सह सुभाए भगती रंग न उतरे सहजे रह समाए। पौड़ी शिष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक समाया इक वल छल करके खाम दे मोह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम कोय लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाहे जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुखदाता नाम वसै मने आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नाम सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सत नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका शिव करे अरदास सचे सब सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाई है मन मुख मोह विनाश ज्यो पावे त्यो रास तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास सब तुदे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे तिस सब किछ मिले इकना दूर है पास तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निर्जास सब तुदे नो सलाह दे दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न ची नहीं मन मूरख दावार दूजे पाए जगत प्रबोध दा न बुझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वस

नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमरत सब किलविक पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दालद दुख कुख सब ले जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख पाग लिखिया तुर साचे, हर सित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवियो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमे होए खुआर। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निदान है, कर्म प्राप्त होए। सच रखे गुर सबस्यों, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो

आप पछाने सावत राखे इकत करियाने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सत समावे सोए। महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल तोवे मन की जूठ न जाए सत्संगत त्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिन्नी त्याया से कर न सवाही सतगुर जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुर जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिनको हो आ कृपाल हर से सतगुर कैरी पाही तिन एथे ओथे।

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिर के पाणे ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख ली।

मूरसा दया हर भगता दे वड्याई गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा सतगुर कै पाणे जो चले तिस वड्याई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसै मेट न सकै कोए कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूजै कोए। महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारन हार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौजल संसार सब औगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किस जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा साला हो भगतो कर जोड़।

सो प्रभ सदा सदा गुर कै हे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन पापियानो ना दे फिर रहन चुन नरक कोर चालियन। हर भगतानो दे प्यार कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला। कबुद डूमणी कुदया कसायण पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या की है जा चारे गैठिया नाल। सच संजम करनी कारा नावन नाव जपेही नानक अगे ऊतम सही जे पापा पंद न देही। महला पहला। क्या हंस क्या बगुला जा को नदर करे जो तिस पावे नानका कागो हंस करे पौड़ी। कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखी है कारज देशवार सतगुर सच साखी है। संता संग निधान अमृत चाखी है पै पंजन मेरवान दास की राखी है। नानक हर गुण गाए अलख प्रभलाखी है। श्लोक महला तीजा। जियो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार नानक गुरमुख से भी है सदा सदा दातार। हौ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा। सतगुरु मिले है उल्टी भई नवनिध खर्चियो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसे निज खाए। अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी। हौं टाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार टाडी मुख लाया। हर पुछिया टाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया। हर दाते हर नाम

इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही जमराव हसे, ऐसा तें जग परम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी इन विद पव सागर तरना। जात पावे ता लागे पाओ परम पुलावा विचों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का। माया मोह मन अगलड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा। दूरा आयो हो जम है तना तिन आगलड़े में रह न जाए, कोई कोई साजन आए कहे मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी रव सप तहना परवे संग, माया मो तब बिसर गया जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली तिन आग लड़े में रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन मेखली लाए। राजा राम अनहद किंगरी बाजे जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलश इक पाया, तिसमें तार चुए अत निर्मल रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला काजिया, तीन पवन में एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की। पहरियां कह कर

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रसमित मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले

पास काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना। निकटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुख।

कर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसै जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे। हर हर दया।

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने हौ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजे गुर पूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल मेल आईए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिख्या सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो सतगुर दाते नाम दृढ़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत ली चै जियो हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए मिल सत्संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी।

वारियां जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हों वारियां मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हों सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हों सतगुर विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे कर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी पांच सौ देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ इक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदय तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निद तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद वाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में ता

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आधावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रस

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई,

जित मैं सतगुरु मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, तन मूरत चसे पल कड़िया, तन सो ओए संजोगा जियो, उद्दम करत मन निर्मल होआ, हर मार्ग चलत परम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो, अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमासे, नाउ नानक कीने भोगा जियो, माज महला पंजवा, सगल संतन पै वस्त इक मांगो, करो विनंती मान त्यागो, वार वार जाई

मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तांबो के आकारा जियो, तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओत, तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाना तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो, नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुरपूरे वजी वधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो, माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो, अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कह सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन पारो तुमरी कृपा ते हुए परगासा सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे हो।

जो बार माता संहारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो। जल थल पूर रहा मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सत्य सदा ते आए जे खिन में सगल उधारे जियो। राख लिए सगले त्रब आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अखल सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो। संता से ती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने सांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत

हाँ टूटे मूले हर अंतर बार गया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जमकी फासा जियो। अमृत वर्ष है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी त्रिपत अघाए रहे जन तेरे सतगुरु किया दिलासा जियो। जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वट पागे नानक पूरन आसा जियो। माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो। जिसके से तिन ही प्रत पारे।

सर्व जिया को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया।

जल फल मैयल जय दिसवर साया, सांत पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जा की शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाध लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथी दिखी प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा खान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाय, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदिर।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं तर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेवया तिन

रह पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जीओ। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत दिन होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जीओ। माज महला पंजवा, मन तन दत्ता राम प्यारे, सर्व सुख दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद।

कटिया जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्त उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन मैं थाप उथापन हारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए पर।

ये सब उतरे तलमल नानक नाम त्याय त्याय जीवे बिनस्या परम को तीखा जियो। माज महला पंजवा।

झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाय जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सबद सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुख दाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा। हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगुण पछोतावणिया। हुकुम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख पूला ठौर ना पाए जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच

इको आप फिरे परछन्ना गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हों वारी जियो वारी इकस त्यों चित लावणिया गुरमति मन इकट कर आया सच्चे रंग रंगावणिया रहाओ एहो जग पूला ते आप पुलाया इक विसार दूजे लोभाया अन दिन सदा फिरे परम पूला दिन नावे दुख पावणिया जो रंग राते कर्म विदाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वड्याई हर कै नाम समावणिया माया मोह हर चेते नाही जमपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किछ नदर ना आवे मन मुख पाप पचावणिया इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शे दे वड्याई जम काल तिस नेड़ ना आवे जो हर हर नाम ते आवणिया अन दिन राते जो हर पाए मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई तू आपे सच बुझावणिया जिन सच जाता से सच समाणे हर गुण गावे सच वखाणे नानक नाम रते बैरागी निज कर ताड़ी लावणिया माज महला तीजा शब्द मरे सो मोआ जापे काल न चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जोत समाणी सुन मन सच समावणिया हों वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावणिया सतगुर सेव सच चित लाया गुरमति सहज समावणिया रहाओ।

ते सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए पगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाणे सच कसवटी लावणिया हो वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावणिया रे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुदे जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख कह समावणिया तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक।

गुर के शब्द सद रहे समाए, सच सलाही सब कट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच नेह चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर शब्दे तोवे, निर्मल वाजे अनहद सुन बाणी दर सच्चे शोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम ते आवणिया। हों वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर कै पै उजल होमे मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए गुरुमुख भगत साए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर चाए एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत न पाए कोई, नानक नाम गुर

तेरे पगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

सोए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिंगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख बिहावणिया लिख दिया कागद मस्त होई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हों वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पावे।

गुरु प्रसादी हर मन वसाए, सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावण्या। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देश अंतर पवे दूजे पाए खुआए, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावण्या। तावत राखे ठाक रहाए, गुरु प्रसादी परम पद पाए, सतगुरु आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावण्या। इस तन में मन को गुरुमुख देखे, पाए पगत जा हो में सोखे, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावण्या। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावण्या। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वजावण्या। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावण्या, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावण्या। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावण्या। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत बेगार दुख पाए, मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावण्या। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैठ सुतान सब हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावण्या। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावण्या। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावण्या। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावण्या। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावण्या। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावण्या, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावण्या। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप दवाए, आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हों में चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे पगत करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करे पुकारा, अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याए, पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, सबद दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावण्या। हौ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावण्या, बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावण्या। रहाओ
तू आपे सो है, आपे जगमो है, तू आपे नदरी जगत पर होवे है, तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावण, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावण, आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलक लखावण, आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया, आपे गुण दाता गुण गावे, आपे आप सुनावण, आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठापे आपे, तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कारे लावण्या, आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावण्या, आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसे कट अंतर, आपे वेख विखालण्या, माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सहज समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सहज समावणिया। काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया। काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सहज समावणिया। कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सबल है सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया। अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया। अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया। आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया। हो वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विदाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया, अंदर नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गावे शब्द सुहाए, मेरे प्रीतम सुख पावणिया। जम जागाती दूजे पाए कर।

पाया जाए। कृपा करे सा सतगुर पेटे मदरी मेल मिलावणिया। दूजे पाए पड़े नहीं बूझे त्रिविध माया कारण लूजे। त्रिविध बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावणिया। त्यों मन चंचल वस न आवे दुबदा लागे दै दिस्तावे। बिखा कीड़ा बिखने राता बिखी माए पचावणिया। हों हों करे कै आप जनाए बहु कर्म करे किस खाए न पाए। तुझते बाहर किछु न होवे बसे शब्द सुहावणिया। उपजे पचे हर बूजे नाही अंदिन दूजे पाए फिराही। मन मुख जन्म गया है बिरथा अंक गया पछतावणिया। फिर परदेश सिगार बनाए मन मुख अंग ऐसे कर्म कमाए। हल्त न शोभा पलत न टोई बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरले जाता पूरे गुर के शब्द पछाता।

सो पंडित होई आसरे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चक साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेच समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे मोह।

माया मोह जलाए सो हर्ष्यों चित लाए, हर दर मैली शोभा पावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत सास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जत सत संजन सच कमावे, गुर पूरे नाम ते आवण्या। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलत पलत दोवे गवाए, सुपने सुख न पावण्या। पेयड़े तन कंत संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, पिरके सहज रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाव गुर शब्द जलाया, एको रव रहा कत अंतर, मिल सत्संगत हर गुण गावण्या। सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चित न आवे, बिन नावे बहुत दुख पावण्या। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथा।

गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पंक्ति परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवण जावण्या। आपसे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावण्या। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब।

सो बत्ता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे, ए बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अक्षर जित तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिरही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आवन जावन टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख नेह कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बनत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करें सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरमुख मन तन पावनिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावनिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार ब्रह्म।

भक्ति पाए पाए पंडारा, दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर कृपा दास नव निहाले, गुण गावे पूरन अगनासी, कह सुन तोट ना आवण्या। ऐसे ओथे तू है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगर न पोहे तिनको, रंग रते गुण गावण्या। क्या गुण तेरे आख समाली, मन तन अंतर तुद नगर निहाली, तू मेरा मीत।

तू साहिब सरण सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अथाह अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया समालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तोसा हर का

पूरा प्रदान सो मस्तक जिसने पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगन पातशाहिया मंदा मूल न उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

0: दूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सच नाए हर वेखे सदा हजूरे।
1: बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित पर हर कंस ना प्रगते पथ नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास, असार तपंदा तिस लगे।

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हरे

नानक जीवै जप हरि दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट गही मन।

जिन रच रचिया तिसे न जाने अंधा अंध कमाए जा पजे ता ठीकर होवे कारक करी न जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंदे थावों दित्ता चंगा मनमुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखानिए अंतर बह के कर्म कमावे

मर जम में आया जाया बिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

उर्ग रहा सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार, बद्दा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार, होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार। ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे, अंतर मैल लगी नहीं जाने बारों मल मल तोवे, अंदा फूल पया जम जाने वक्त पराई अपनी कर जाने, हो मैं विच दुख काले नानक गुरमुख हो मैं तुटे ता हर हर नाम तिरावे, नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे। पौड़ी, काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सोहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला, पूर बोल मुर्दार खाए अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथे नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा, जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए, जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे छप्पड़ नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए, ओ आप छुटा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी, एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक पगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादने भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सत गुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाई का।

आए खाते अगे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापे पौड़ी महारुति सब तू करी मूर्त विचारा तू गणते तिने न पायो सच्चे अलख अपारा पड़िया मूर्ख आसी है जिस लब लोभ अहंकारा नाव पड़ी है नाव बुझी है गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खत्या भगती परे पनारा निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्यारा जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा सच्चा सा हो इक तू होर जगत वनजारा। श्लोक महला पहला। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान

मुसलमान सदाए नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पदार्थ वंज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा विन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझन विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस अग्गे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना।

जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण, सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर्दी बानिए। सुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया। एक होए असवार इतना साखती,

बेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोहे मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखनहार।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

काओ थान तिना मास्थ वाले एह चलाए रहा नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असदा कीड़ा खात दे पात साई लश्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों।

एक निरंकारी नाम आधार जीवा दाता मरे न कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम से आई है दूजी कार है लग जन्म गवाई है बिन नाम है सब विश्व जय खाई है सच्चा सबल सलाह सच समाई है।

तेरा अग्न हृदय पर बांधा, भोजन सार चलाई, सगले दुख पानी कर पीवा, तरती हाथ चलाई, तारता राजी अंबर कोली, पिछे टंक चलाई, एवड वद्दा मावा नाही, सबसे नथ चलाई, एता तान होवे मन अंदर, करी ते आस कराई, जेवड साहेब तेवड दाती, दे दे करे रजाई, नानक नदर करे जिस ऊपर सच नाम वड्याई, महला दूजा आखन आख ना रजिया, सुनन ना रजे कन, अखी देख ना रजिया, गुण गाहक इकवन, पुखिया पुख ना उतरे, गली पुख ना जाए, नानक पुखा ता रजे, जा गुण कह गुणी समाए।

पुजै पावना खर दर्शन के पेख किसे सच समावना सच्चा पुरुष अलख शब्द सुहावना मन्ने नाव विसंख दर्जे पावना खालक को

लह न पुख राजा राज न तृतीया सायर परेख सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा निखलंग तस जन्म सजावत ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के करण तारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विकसिया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कदे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया सच्चा शब्द विचार काल विदुषिया ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यों जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे तोते मूल ना उतरे जेसो तोन पाहे नानक बख्शे बख्शे नाहे तपाई पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिए सुख सुख दुख दोए कर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरब अलग सिरज निहालिया उजर पुले रहा गुरवे खा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया निदरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पैर च जमे पै मरे पीपो मन में होए नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए महला तीजा पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए पौड़ी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हा सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुरु होए दयाल ता नव निद पाई है सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है श्लोक महला पहला सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाही पेगा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही ओना

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कह बिन कोई ना लंगस पार, कह पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ तै तन अगन पखे पै नाल, तै पाओ कड़िए सब दुसवार। तै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्यानप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोले।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, तिस विच भूख बहुत नैसा।

सबनाकाशोए जाके जी जंत तन माल नानक आखण बिखम विचार। गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

पीठ हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

जाए, मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाव तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साग मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार, रे मन मेरे पौम न की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नहीं को खाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगन पुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुर मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रबल।

गए हुए ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवल तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहा। तू एवड दाता देवन हार, सोत ना ही खुद भगत पंडार, किया गर्द न आवे रात, जियो पिंड सब तेरे पास। तू मार जीवाले बख्श मिलाए, जो पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे। तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई। दौड़ी महला पहला, जिन अतख कहाया अपियो पी आया, हम सह मिश्रे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ। जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे। गौड़ी महला पहला।

शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जौ कै हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत पाया रह सुखाली। बाजी एहो संसारो, लग लोभ मुच।

हाँ तुद आसा मेरी काया, तू सुन सिखा मारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी।

पावन पल्ला पाया। हल्त न सोबा पलत न टोई एला जन्म गवाया। हौ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

गवारा पूजा मेवा में सब किछ चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीव दीवाल उसारी पख मंदर की तेरी संचे संत ना दे किसी अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपे किसे न केरी सुन मूरख मन अजाना भोग तिसे का पाना रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा हम तिसके वन जा रे जियो पिंड सब रास तिसे की मार आपे जी वाले गौड़ी चेती महला पहला अगर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी।

अवर ने तेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना। जम डंडा गल संगल पड़िया पार गए से पंच जना।

लज टूकस मूसा पाई रे। मन मुख करे ते का दुख लागे, गुरमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिनकी आसोई हुआ, कितना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे उने, जो राते रंग लाई रे। तिनकी पंख होवे जे नानक, तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती मैला पहला, कब की माई बात तक चेरा। किदू था वो हम आए, अगन बिंब

केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

तरे अंश न चाहया जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग सु होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाए।

तेरा सौ मिले वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुबह मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौ वसे हो मिलोगी बाप पार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी

इतना पारा वार मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा।

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अगन बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सोथाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए हर गुण गावे बैस सुखाए रहाओ। जलो एह जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द।

दावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ इक दावे इक भगत करे, नाम न पावे बिन असनेह, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिज राखिया सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए तपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बक्से नाम पछाने, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे देव डिहाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन लया सवार, हो मैं विच्चों तजे विकार, जो पुर राखियन मेल मिलाए, कदे ना बिछुड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने, गौड़ी ग्वारे री महला की जा, हों मैं विच सब जग बोराना, दूजे पाए परम फुलाना, बहुत चिंता चितवे आप न पछाना, तंदा करत्या अन दिन विहाना, हृदय राम रमो मेरे पाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई, रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता, जग जीवन सेव जुग चारे जाता, हों मैं मार गुर शब्द पछा

जित सेवे दर्ग है पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखानी रहाओ। जय सतगुर तह सत्संगत बनाई, जय सतगुर सहजे हर गुण गाई, जय सतगुर तहां हौं मैं शब्द जलाई, गुरुमुख सेवा महली थाउ पाए, गुरुमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरुमुख भगत हर नाम समाए, आपे दास करे दातार, पूरे सतगुर च्यों लगे प्यार, नानक नाम रते तिन को जयकार, गौड़ी ग्वारे।

साई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा से पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे समय न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूझे अंध अज्ञानी कदे न सीजे इस युग में राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आप करे सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म कर्म न कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह मन साचे राते हर वे परवाहो सच्चे मैल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पर जल उतरो पार रहाओ परमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप पुला के प्रत आप पुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुर सेवा ते मनपति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर शब्दी होए गुरमत विरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजे गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे हर का नाम रखे उदारे नाम रते पौजल उतरे पारे सतगुर सेवे सदा मन दासा हो मैं मार कमल परगासा अनहद वाजे निज कर वासा नाम रते कर माहे उदासा सतगुर सेवे तिन की सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी हम दिन जपें हर

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख दीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया, बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हट आवे जाए, गुर का शब्द न चीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, हम दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया, तेल करे गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेये फिर वसे कहो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आये, वड़पागी सतगुर मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान इयाने, सतगुर सेवा न करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते एवे पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा। तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाई है संत जनो जिस देख हो जीवा, हर दिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गक्कीनी हर रस गुर के पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

रे हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई, गौरी ग्वारे री महला चौथा। निर्गुण कथा कथा है हर की, पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन चावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे, संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई, ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई, गौरी ग्वारे री महला चौथा। माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा।

गुर सिख प्रीत गुर मिले गुलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौरी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस

त्यागे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय विवसै देखे माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए और सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए कूड़ा कछ पाचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी गुर सिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया तावत पंच रहे हर त्याया अंदिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तूर जिना मुख लाई तिन कूर त्यागे हर लिव लाई ते हर दरगे मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल कद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रब रया बनवारी हर आपे तप

हर आपे शब्द सुरत तुम आपे, हर आपे वेखै विखै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हर आप करे आपे निस्तारा, हर आपे बेड़ी तुम।

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हमने हर नाम बनन जय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर बनज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर पगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जे है वणज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साहु।

हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप।

हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संता।

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपिया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन तो पानी अन खाना कपड़ पहनन दिया रस अन पोगानी जिन दिए सो चितना आवे।

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभु।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काकी कै किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति।

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ आवे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी।

चोली, अपने हर पब की हौ बोली। जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली। रहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली। हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट वसै हर कोली। हर हर निकट वसै सब जग के, अपरंपर पुरख अतोली। हर हर प्रकट कियो गुर पूरै, सिर वेचियो गुर कह मोली। हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अंदिन हर गुण गावे, मिर सतगुर गुर वे चोली। गौरी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विदाते। जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया। हर राम में नाम समाते रहाओ, हर हर नाम हर हर जग अवखद। हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते। दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड अवर न दाते। जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोए कचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम।

को नसीए हर आपे बस ले प्रभ साचा हर आप छदाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए सतगुर की शरणाई पज को मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाओ मेरे मन से वो सो प्रभ सर्व सुखदाता जित सेवे निज कर वसिए गुरुमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसिए मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लैलाहा हर मन हसिए हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न पिटिए मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर जित सेवे है लेखा छुटिए जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल न कटिए गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन सन लोच कनेरी राम मेरे मन सन लोच

जो पानी कागद बिनस जात है त्यों मनमुख गर्भ गला डे। हम जाने कछु न जाने आगे जो हर रात है त्यों ठाने। हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है। राव सात हर रस साध।

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सर।

बेचाया हम अपराध पाप बोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तो वे।

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरुमुख जिंदु जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वड पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, रिच संगत नाम।

मन अनदिन अनग्रह जियो हर पायणा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कारे लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासे।

मेरा हर प्रभु सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो, हऊ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर आप खेले बहुरंगी जियो इकना भोग पुगाएगा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नग नंगी जियो आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर दान देवे सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंगे हर चंगी जियो हर आपे भगत कराएगा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहा नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहा पर पूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखे आप अधूरी जियो हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा हर आप वजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर सबदी हर प्रभ गाजे जियो आपे शरण पवाएगा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिदका जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर सबदी पाये हर प्रीतम राओ जियो वड पागी जप नाओ जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सत

जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मंगवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल।

तर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हों मैं के फासा, राज कमावे देह सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हों मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाय, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमी है प्रम किसका होई, जहाँ जल तल मैयल रविया सोई, गुरमुख उबरे मन मुख पत खोई, जिस राखे आप राम दयारा, तिस नहीं दूजा को पहुँचन हारा, रहाओ सब में वर्ते एक अनंता, ताकू सुख सो होए अचिंता, ओहो सब किछ जाने जो वर्तनता, मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवे तुर किरत लिखियासा, जैसा बीजे तैसा खासा, देख दर्श मन

करया, कई जन्म गर्भ हिर खरया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे पर।

कहो नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। हल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार।

हुकत सियानप सगली त्याग, संत जना की चरणी लाग। सर्व जी है जाके हाथ, कदे नव चुड़े सबके साथ। उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी छोट। सदा निकट कर

अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौरी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन जीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहर त्याई रमैया रेन

राख गुरु का शब्द अमृत रस चाख अवर जतन कहो कौन काज कर कृपा राखे आप लाज क्या मानस कहो क्या जोर चूठा माया का सब शोर करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचाए हो गुरु उपदेश मने में ले हो जाको राम नाम लिव लागी कहो नानक सो।

एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूर है सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पा

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सिंह।

पहला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहा जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का लाह सुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जाके हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनेक रूप देख नहीं।

त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कौन सो विद जित राम गुण गाए, कौन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो

बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा साध संग के नाही नेर लख चौरासी परमता फेर एक जाल पाए पंखी रस रस को

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रव तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए।

ओ प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जिवे तू राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पा।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुरु पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदर।

कवन बपारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोरे।

ठाकुर नाम कियो उन वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरु पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सब ते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत

संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेट तो हौ मैं मारी। सतगुर संग नाही मन डोले। अमृत बाणी गुरुमुख बोले।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

पैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जस्तानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राख।

पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वेसा हो गुर पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला तमवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ वाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बां पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका।

आप कमाओ अमरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जते भगवान। आप तैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों।

विचर आ गया पिचर भोग भोग जल न पाय राम स्नेह किरत संयोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संयम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पन्नवा हम तनवंत।

प्रीत गोविंद सो लागी, दुख दर्द प्रमता का पाजी रहाओ। जा को रस हर रस आयो, सो अन रस नाही लपतायो। जा का कहे दर्दे चले, सो किसको नजर ले आवे तले। जा का सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के

तह सहज अथारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हर्ष अनंत सोग नहीं दिया सो कर गुरु नानक तो दिया। गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा।

जिस कर कृपा सतगुर मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहा दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाते गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

हरसा प्रीतम कर मन मीत, प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव, आद पुरख अपरंपर देव, किस ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगाद जा का परवासा, जाकी प्रीत।

पीर कहो नानक मैं सो गुर पाया पार ब्रह्म पूरन देखाया गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदय समाया। गौड़ी महला पंजवा, का की माई का को बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

वड़ा जिन राम लिवलाई रहाओ पूमिया पूम ऊपर नित लुजे छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे कहो नानक ये तत बिचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौरी महला पंजवा पूरा।

पूर्व के अगकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा एक सों जाका मन राता जिसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल अराद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द प्रम पौ नस्या करण हार नानक।

चरण ठाकुर के मार्ग तावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप।

छोरे मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तै दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेतत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपक बुझाई रहाओ। तब अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मत

पुनी मन आशा करी दया सतगुरु गुण ताशा दुख नाथे सुख आए समाए कील न परी जा गुर फरमाए इस पुनी पूरे गुर मिले नानक के जन सुख।

सिमरत सिमरत प्रभु का नाम, सगल रोग का बिरसिया खाओ। सहज सुभाय बोले हर बाणी, आख पहर प्रभु सुमरो प्राणी। दुख दर्द जब नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौरी महला पंजवा पले दिन।

गुरु के चरण हृदय उद्धार, अगन सागर जप उतरे पार, गुरु मूरखों लाए ध्यान, इहा उहा पावे मान, सगल त्याग गुरु शरणी आया, मिटे अंधे से नान सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए।

जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर मह व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले प्रभु।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से ब्रह्म को पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास, गौड़ी महला पन्नवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग दे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

दात नानक नाम जपै दिन रात गौरी महला पंजवा तू समरथ तू है मेरा स्वामी।

जो कुछ वर्तै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसे

ताके संग किलविक दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय, गौरी महला पंजवा। हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

पूरे सतगुर मिलन सारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किस

आनंद निवासे। राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा। रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती, गुण गोपाल गाये दिन राती। कर कृपा प्रभ बंदन छोटे, चरण कमल की दीनी ओट। कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस की रह जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा। दुख दर्द प्रमता

आस आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास साध संग खाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा। हर सिमरत सब मिटे कलेश, चरण कमल मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लोभ मद खोए, साध के संग किल बिख सब टोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा। जिसका दिया पैने खाए, किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा। प्रभ के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जाके हृदय वसे भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा। खादा पैन दा मुँह कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस क्यों बेमुख जिन जियो पिल दीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया, बजे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरे।

सगल मनोरथ मुक्त पद गीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोई न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सकल बिदारिया। रखना जी दी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे। पीवत राम रस अमृत।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

0: कर कृपा प्रभ ले निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार। अनस बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए। उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम। वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार, पाव सागर चढ़ उतरे पार। साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगे पाये मान। गौड़ी महला पंजवा, जल तल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा के सिमरन जम नहीं डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक। महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे देहात। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर तूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो भिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते। पै पंजन प्रभ मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही। रहाओ जा के हृदय बसियो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम। जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बार राख्यो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल। हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग। रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही। हर विसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे न नेरे। सोवड पागी निचल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा,
1: जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रब का पाणा, जग में आया सो परवान, काट काट अप

टोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ठ होए।

साज तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म परगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर से आइए गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांत पाई गुरु गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पाए कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार।

आगे आठ क्यों थान वस जाते आठ कहरे मन हर को जाते पप परवान सत निशान जा तो आप करे फुरमान आपे दाता आप प्रतपाल नित नित नानक राम नाम समाल गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल हृदय वसिया सदा गोपाल राम रवत सद ही सुख पाया मया करी पूरन हर राया रहाओ कहो नानक जाके।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्दम कर शीतल मन भय, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पए आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, एकत साध संग गई बलाए, रहाओ नेत्र पुनीत पे खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की चीनी आप सहाये, सुख पाया लग

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुरु प्रसाद नानक सुख बासन। गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल। ताप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे। अनिक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे। सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपत प्रभ सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे। नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया। गुरु गोविंद

नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उभरे सब कोए, करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपोगाई। गौड़ी महला पंजवा, कुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन मीत।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिवलागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सनकादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे। जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे, ताकि शरण जिन बिसरत नाही। वद पागी हर संत मिले।

कौ संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण दहो पूरन।

है कोई संत मिला वे नेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो जग सोया त्यो परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त दिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रोह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई।

गुरका शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा।

रोजाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राख है कैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरहे दिखायो तो शरण करयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा कुछ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की विद तुम ही जाने तुम ही सदन सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते परम पो काट किए नहीं केवल जब के

जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्स प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिसे सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन में रव्या निमक निमक नमस्कारा दीखिया।

ऐसा जोगी वद पागी पेते माया के बंधन काटे। सेवा पूज करो किस मूरत की नानक किस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता। हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

श्रृंगार पूरन होई मन की आशा गुर के त्योहार रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त।

सेवक संग तुम प्रवराते, पोत पोत भगतन संग जोरी, प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी, राम संत में भेद किछ नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कहिय प्रगट प्रभु हुआ, हम दिन कीर्तन रसन रमोरी। तुम समरथ अपार अत ऊंचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी, नानक को प्रभु की जय कृपा, उन संतन के संग संगो।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल त्राके गौड़ी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुर।

ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

सगल कथा प्रतिपारे रहाओ। महा कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध लोभ मोहे मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो।

मेरे हर भगत बिना जीत जन्म के रतन अमोलक साध संगत जप एक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उज

तीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वड़े पाग हर के आये।

तू गुर प्रसाद कर राज योग, हर रस जिन जन चाखिया, ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया।

गौड़ी महला पंजवा जाको बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गा।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खय, कृपा निज प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए, रहाओ एक रैन के पावन तुम आए, बहु जुग आस बदाए, गृह मंदर संपे जो दिसे, जो तरवर की छाए, तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, चिन्मय होत पराए,

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिय रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाय, जो हो दयाल सतगुर अपना, ता ए मत बुद पाई।

आवे दुख पंथ पहान रहाओ। सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है काल। कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल। होम जग तीरथ किए बिच हो में बदे विकार। नरक सुरग दोए पुंचना।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग गौड़ी माला।

उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी। रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा, सुख न किन्हू लया। तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, बूजत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जल तो कभू न बूजत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तूरा।

एहो जियो बताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो। पोथी पंडित वेद खोजंता।

पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस सा

संत देव संदेशा पैचरण आरे जियो, खुद दिन कित बिर करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिग संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

माया मोहड़िया देव जार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर्श होंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा माज दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम आठ तह आराधी है पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ जित कट वसे पार ब्रह्म कोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराद ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजनहार गुर तुठ है सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है पव जल पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सावास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

फिट सोजी मन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंद सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जाचते।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

तो दीसे सो सगल बिनाशे जो बादर की छाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एनिस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों ए विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यों झूठो त्यों जग देख ताक उठतावे फुगत मुकत का

जन नानक हर पए दयाला, तो सब विद बन आए गौड़ी महला नावा। साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाओ। राव पतित पुनीत दीन बंद हर।

माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता क्यों

साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोग मोह माया ममता सुन, औ बिकियन की सेवा हरख सोग परसे जे नाहिन, सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब, क्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोग मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन, ते तुम जानो ज्ञानी। नानक मुक्त ताहे तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहा पयो तें बौरा। एनक औद कटे नहीं जाने, पयो लोग संघौरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इनमें कटते रो रे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तैहारियो, गोविंद दत्त नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन त्यों, बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मुहिया, निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप से डर रे। दीन दयाल सगल पै पंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मो तर रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार, पूरन पूर रहया बिखमार, त्रिपुटी छूटी बिमल मजार, गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पहे सूहा रंग माया, नगर पही दिख ठाक रहाया, उल्ट पही जीवत मर जा गया, शब्द रवे मन हर क्यों ला गया, रस संग्रह दिख पर हर त्या गया, पाए बसे जम का पौ पा गया, साध रहे बादंग अंकारा, चित हर क्यों राता हुक्म अपारा, जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पही सुख आता।

पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ज्ञाना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सह समाना। गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ। कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मो को एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पचाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त फेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सब एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुखाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न रेखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एक हो जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख पे आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सच करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलक अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच

जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार असारी दिन गुरु पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे दिन गुर अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाथ दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका सीत समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत शैत बाहो मद कीट में खासा हरनाकस ले नखो विदासा दैत संगारे बिन पगत अभ्यासा जरासंध काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम विदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरुमुख साच पगत निसारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इक तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली ऐनक फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहां सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस का

सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल सोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जा रहे, सो उबरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत न कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, देख पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्ताता, गौड़ी मैला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन

किसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, किसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो किसको जिसका यो जियो, गुरु शब्द जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हो करत नहीं पच पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्याग पंथ संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है। नेकल कोई न

ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने भिख देनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चित्रा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, चित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, तो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर सबदे पाए, अर्ध उर्द की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाव परने पूले आवो जाओ मन मुख सूतक कवे न जाए जिचर शब्द न पी जाए हर कहनाए राव सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अग्न पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किसाहे सूतक कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेवे सूतक जाए मरे न जन्मे काल न खाए सातक सिमरत सोध देखो कोए विण नावे को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल में गुरमुख उतरत पार साचा मरे न आवे जाए नानक गुरमुख रह समाए गौड़ी मैला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जियो राखो हृदय उर्धारा गुरमुख सोबा सात द्वारा पंडित हर पर तजो विकारा गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए गुरमुख मैल न लागे आए गुरमुख नाम वसे मन आए गुरमुख कर्म कर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने न कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतुराई जो किछ कमावे सो थाए न पाई आवे जावे खौर न काई मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना बग जो लाए बहन सियाना जम पकड़िया तभी पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु

समावे। हर कथा सुने से तनवंत दिसे जुग माही, तिनको सब निवे अनदिन पूज कराही। सहजे गुण रवे साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया।

परम पुनाए, मनुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

बंधन न टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिव लाए, हौ मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जहां हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वडपागी, हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हऊ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर के नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चले विच विस्ता पहे पचन इहो जग परम पुलाया मोह टगोली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहने हों मैं मैल गवाए सबद रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बस।

मन करहला गुरु गोविंद समाले रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाले, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाले, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जमकाल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा।

जब हो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई ताते इस संग नहीं बहराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर

दास जपत पाव अपदा जाए, सावत मनुआ आवे खाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास, जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत

जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता, जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द निरिद अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे। दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए, जाको दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन

जा के सहज मन पया आनंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच धर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रव सस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अर पेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तह पौ परमा सोग ना चिंता

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे। गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है जो इस

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल किरपा निज, इस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुरु दुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता नहीं चल चीत, हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उदरे, कोट मजन जा

मन अपने मैं फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिन सला

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेखियो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरे

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहे हो, कोट मदे किने गुरमुख ले हो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहे हो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौं संचो हौं खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौं सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुर

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

शंकर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन करे।

रहेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया। नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए। नानक सा तन मिले।

सब दे सुहावे ता पत पावे, दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे, सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई ना पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर।

तिस बाज वखर कोई ना सूजै, नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया नानक नाम।

सा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे।

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यू मिली है माए तासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर

अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, दिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवें मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया करे आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस दे दीजियो, हर कैसे सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गल काई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे।

अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीत मत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे सच शब्द सिगारे हौ मैं मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा अवगुण बख्शन हारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुर बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अंग दिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौ निध पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहे था जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यों मरिए किन में दाम नाम किल विख काटे पय पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पय मनूरा स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वा पारा अगमा पारा गुरमति तन पाईए सेवा सुरत भगत के साची विचों आप गवाईए हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहार।

साध गवाए, सदा हर रस पाए, जहाँ हर पाए, रसना सब सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजय नामे बिनसे नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिखिया लोभ लुवाए, बिखिया लोभ लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदूसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अनंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाउ गवाया अनहत वाजे वजे कर में फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

आवे जहाँ साध संत एकत्र हो गए तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज।

जपैन दाना जमपाल तिन को लगे नाही जो एक मन प्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवाना।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कल मले दहता शुद्ध करता दिन सिरैन आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत ना

बिन वंश नानक करो कृपा समरथ सब कल धारे गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जा के प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिन वंश नानक।

मैं लह हर संत मान त्याग कर भगत गौरी मोहे साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पे नरक निवार पुनीत कर किस जंत सुन सखिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नाशे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जा

आकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत पर ओवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण दिस्तार सगल पाप कर करे उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेउ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बाँछे सुर्ग नाचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पेख अर ज्ञान त्यान मन हथ मिलियो न कोए कहो नान।

आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्ग तप करते सास सास सिमरत त्रब रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आव

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक रात

या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुखदेव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै

कै रस राते अहं बुद्ध माया मद माते या माया में जन्म मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लावो।

एकै आप अवर न हो, हो अनहार होत सद आया, ओ आपा अंत ना काहू पाया। कीक हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस।

ओ गमिये जास रसन हर हर जस पनिये आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल तरना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मात।

उद्यान परमत पछताप है आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो श्लोक खास खर्च

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनब स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृहमाल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ पानिया पूरी तिना परी। श्लोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग। पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देका बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरधि कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग, नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आन न कस्तो कोए, आज जुगा दी।

चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत

बिनस्तो कास्यो करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे हो वो सो प्रसन्न। ज्ञा कै

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। वा डेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

मनुआ जी तै हर मिले ते सूरतन वेश। ना को जाने आपनो एक टेक आधार, रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एहू कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राए, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग ना तन चले।

पात निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक था के बहु विध काल ते तृप्त ना कृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनेक बंच बल छल करो माया एक उपाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन के काम न आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो

नानक नाम ते आईए कारज आवै रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटै संत संग होए बास तुरते।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ

तैं पंजन अग दुख नास मने अराध हरे संत संग जे रिद बस्यो नानक तेना प्रमे पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डह काए दुतर महा बिखम ए माए गुरुमुख

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

दुख सुख हुआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर हो

याहो तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई नानक ते मत प्रकार।

पौड़ी। हे रो काट काट सगल के पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटते होए आनंद ते हौ नाही ते आप, हटे दुख जन्मे मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत्। लाहा माया तारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हो संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

पाव जल ते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई।

खरा दिलासा गुरदिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्रिभवन प्रभधारे अखर कर कर वेद विचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन वख्याना अखर मुक्त जुगत पै परमा।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है नाम।

प्रभ के सिमरन दूस जम न से, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अन दिन जागे, प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तक पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी, प्रभ के सिमरन हो सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुपाए, प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि सनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सह समानी, प्रभ के सिमरन निचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद जुन पार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण तर्क नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार्ग के हो जात अकेला, ते हर नाम संग होत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघ्न जय आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंख तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय मां प्याम सब बहु काम, तय हर के नाम की तुम ऊपर छान। जहाँ त्रिखानन तुझ आकर है, तय नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरकर नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस पर संत दिन रात, हर हर औसत साध समात। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भूत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब करे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन सो बापाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत पछवाए वियोग। जन वाता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप सब दीना। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का पगत प्रकट नहीं छपे। हर की पगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लखा। नाम की महिमा संत रिद वसे, संत प्रताप दीर्घ सब नसे। संत का संगवद भागी पाये, संत की सेवा नाम ध्याये। नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जापता ज्ञान सब ज्ञान, खत शास्त्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पासी। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव, महा उदास कपि सरथीव। अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर पूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अच्छादन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मेल न जावे। हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्व गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न भिख्या करे। जल को वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहा होए काची वीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे। पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपार दर गहनी सिजे। छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल। अगर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सब गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे। जे को जन्म मरण से डरे, सात जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तो कह बल बल जासा। सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साफ संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने से बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेता। निर्तन को

अंतर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल हिरिया।

बीज है जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निद पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदाजा न दूरे।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्याग स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर

मतलब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जिन प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नान।

होत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटै सो ज्ञान, साध के संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

प्रभु बने आए। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए।

साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सो बासुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलू खत हरे, साध कै संग नरक पड़ हरे। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध कै संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट जीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

सदासमदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक।

कै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप द्रे अवरे नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते दिन सह सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे विषन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए।

नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुजोनी फिरे।

तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तक के देते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पह सब सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यार।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानव गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर करावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उधारे, आप करे अपन विचारे, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरण आवे, कहो मानक ते क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे, अनजानत बिख्या में रखे, जे जानत आपन आप बचे, परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिस

कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोई।

अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल

नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सो जन नानक दरगे प्रवान। कूट कर्म करे हों तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए। करण करा

रचिया समाए, आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार, उसते तिन कहो किस होए, स्थान समंतर एक कैसोए, अपने चलित आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना, पला पला।

और अष्टपदी। संत के दुखन आर्जा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दुखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे। संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित। संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे।

बरसा पाप मिटावे। अवर से आनप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग, आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह श्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक।

सतपुरुष पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंच प्राणी अगम अगोचर प्रब निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनित भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय स्मरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में रखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंग भया दुख ना उठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निरपौ हो बसे सगल व्याद मनते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार हवर उपास पद मीत विसारो चरण कमल उदने उर्धारो करण कारण सो प्रव संगरत दृढ़ कर गहो नाम हर वत यह तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करें फली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनित उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बोधो हर कहनाए दैवस्ताव आवे ठाए ताको विघ्न ना लागे कोए जा कह हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जन फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव क्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की पवित करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर्गनता इनसे कहो तुम कर्म सनाता राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कर्म छुटकार अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन जिये तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना भो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाखो मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विकैल हो है अचिंत बसे सुखनाल साफ ग्रह सर नाम समाल छाड़ त्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाहे
एकस्के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत। एक को एक एक हर आप पूरन पूर रहे हो प्रव्याक। अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज पराशक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदे जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्याव। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुकुट जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच्छुकुनी श्रद्धा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुर है तब यह बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तर यह संसार बिन भक्ति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमक हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साग संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपसे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग समात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोक्ष व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको बनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
ਆਪਣ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰ ਜਾ। ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ। ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ, ਤੈ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੈ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ। ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤੈ ਕਿਸੇ ਪੂਕ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਕੁਮਾਰ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ, ਤਬ ਕੌਣ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ। ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੈ ਬੇਦ ਕਤੇ ਪਾ ਕੋਚੀ।

कौन कही है चेहरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप उसको आपे आदेश।

बहु बेंत उठते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुनते है पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जिंजाल हो में मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बख्यान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत सोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगणित अतोल ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। नानक एक को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। आपे एक आप विस्तार जात पावे ता श्रेष्ठ उपाय। अपने भाणे ले समाये कुमते पिन नहीं किछ होए। आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो संदर्शी तप का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा के सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल जी अनुभव पात जो जो रचियो सोच सहत्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए। सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का।

साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की।

प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सबसे ऊंच पाए अस्थान, बहु न हो वे आवन जान, हर तन काढ़ चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,

दास सुंदर चतुर तत्व का बेटा सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ता

जानी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी, सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी।

से लाभ मिले तो ताहिर है हर दरगे पतवंत राम नाम तन संच वै साच सहा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पये जिन मन वसया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाये जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख।

इस पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हो।

प्रस वेद्यो अज्ञान रच्यो संसार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमर्यो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच।

कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिर है साध संग निवलाए, खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कर।

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगाश सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

प्रीत हर नाम न जपें करत विपरीत पर त्रै रमें बकें साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरे पर दर्भ उदर कहताई अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल इहु धर्म। श्लोक दुर्मत हरि से

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईए। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अकत उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे आप कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब होना।

मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए पौड़ी। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उदार। किलबिख काटे होए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुख ऊजे।

सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उद्धार, सब कार्य तिन के सिद्ध हैं जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तो

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया न कोए, सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए, नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावे

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निर्वैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार, सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए, जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए, ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन, ओए ते हो जेहे दैव जाए, नानक दोही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देख।

कनेरियां जे कार वत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारियां नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यों करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुरु पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू से तीर अल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए दरिये ता जे किछ आप दू कीचे सब करता अपनी कला वधाए देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आने वाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सत

गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर टोई नाहीं, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाई, जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यो चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभु सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना होया।

सिख सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको को कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोई आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख।

0: से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान दिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निवाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिव सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से ही जान दे, जो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौं तिन विट्टो सद कुमकोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख मेरा, सिर तिन विट्टो तन रोलिया। जो सिख गुरु

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू लै अतरती

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी एक मन एक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे। जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सत

जन नानक अगम विचारिया पौड़ी। सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

चौथा सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार तन तन से सहा है जे नाम करें व्यापार वन जा रहे सिख

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

रंग सुभाए, सतगुर सेती मन रता रखिया बनत बनाए, जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए, नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया, सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया, सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा, मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

शब्द ना सुनई बहु रोल कचोला, गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो अपनी आपे पछतानी, अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान।

था। मन मुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अंकार, झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे, शब्द ना करें विचार, शुद्ध मत करते सब हिरलई, बोलन सब विकार, दित्ते किते ना संतोखिये, अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार, नानक मन मुखान

के पूरे सतगुरु पावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लहे लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाए मन सच्चे पाना नानक प्रभ।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे, कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे, नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों, सब किछ जिस कै

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर भेटिया।

सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दित्ता।

मर गए मर भी न सके मूल, वे मुख होए राम ते ज्यो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पनिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लोथियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव्यो जी अड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु।

आए अन तन बहुत उपजिया पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए सदा सदा गुण उचरे दुख दालद गया बिलाए पूरब लिखिया पाया मिलिया तिसे रजाए परमेश्वर जी वालिया नानक तिसे त्याए। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण इको सिमरिए दूजी नाही जाए किन बिद तीरिए डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन तन तन होसी चार जाने कोए जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए

तह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद न छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजक कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक खणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुंदे।

उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारण कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर नर है जारे राम उदक जन जलत उबारे पव सागर सुख सागर माहे पीव रहे जल निकुटत नाही कह कबीर पज सारंग पानी राम उदक मेरी तिखा।

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

मिल रोई है। जो पैरसना राम न कहबो, उपजत बिन सत रोवत रहबो। रहाओ जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती मह जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना।

मोती तित लागे कंचुआ फल मोती कवन सो कार जो निरपो कही है पौ पज जाए अभय होए रही है रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

कहा सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाते ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड़, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई।

तुके। जमते उलट पए हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए हैं मीता, साकत उलट सो जन पए चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

जो मन मारे हैं, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

चेतक सिद्ध पै लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो होए नाना, कह कबीर राम नाम पछाना।

ना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को ठगौरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई रहाओ। कौन को पुरख कौन को नारी, या तत ले हो शरीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल से।

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

होई, कुशल कुशल करते जग बिन सह, कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद पर गासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्मा

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे होए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती सूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी। सुन

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल अम

आवत जोन जन्म प्रम था के अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश। काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस कहो शीश। बिखे बाच हर राज समझ मन बौरा रे निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे। गयो न राम जहाज राहो मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे। लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गो

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब।

भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो, तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर चौ दिस ठाट ठयो, कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी, कह कबीर इक

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज

दास रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुग

पुरना पीजे पग न खिसे, हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे, बेग मिली जय अपने राम प्यारे। रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण, हर की

ओ आका स्वरूप देख मोहि ग्वारन, मोको छोड़ ना आओ ना जाहू रे। तोहे चरण मन लागो सारंग तर, सो मिले जो बड़ पागो रहाओ। वृंदावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही।

परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

जोन में प्रमथ नंद बहु था कोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे रहाओ।

उठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपड़े निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा ची

थे तब तुम नहीं, अब तुम हो हम नहीं। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पतियाही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध

अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई रहाओ, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन पूली, बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मूसे, दसवें सत समाई, गौड़ी माई मोहे अवर ना

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे तहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तब

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ, मेरी हरो विपत जन करो सुख।

दे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरे अभिमान। बाहर उदक पखारिये कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंच।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनी।

हरत्या में तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हरत्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सराम तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवन अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा।

तित रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवै मन चीत, बैंदिया उठदिया नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, तित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथया, और पखलाए जे असी किया,

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख दे, देख वरन दिसे सबके, जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदासे परम

एहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कह लागे पाए। आसा मैला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागे तूर। लागी मैल मिटे सचनाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख सा

हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पत सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बखे पूछ न होए, दूजा मेटे को सोए, हासा महला पहला, एक आवे एक जावे आई, एक हर राते रह समाई, एक तरन गगन में ठोर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला तो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा कर।

0: भूख रहे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहा। अनंत तरंग भगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रख नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आ गए बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग।

ले सब जप तप जिस हर हृदय अलख व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशि ता तीर्थवासी गुरु वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

आप प्यासी से जय आवा आगे से पावा के न पावा क्या जाना क्या होएगा री माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

सिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैरवे।

है कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जह देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूँ जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा मैला पहला छह घर छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुर प्रसाद आशा करती जा मेला पहला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ कर सलाम लखा ऊपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवस है नानक नदरी पार आसा मैला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पक्कल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस शिवत तुम।

कोड़े छोड़ विलायत देश गए, पीर पे कांबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पे, साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद धरते रह नाम रते दर।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बो गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

मां हंडावो, जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत में जोगं, अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्पूरे नादं। पत विचार ज्ञान मत दंडा, वर्तमान विपूतं, हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकं, कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

कौन डराया, आपे दोष न दे करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने की दर्द न आया, करता तू सजना का सोई, जे सकता सकते को मारे काम रोशना होई रहा, सकता सिंह मारे पै वग गए खसने सा पुरसा।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोक द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे न पीर। जम काल किस नेड़ न आवे, नानक गुरमुख साथ।

पाए। जो मन गाते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवा।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सो घरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे टिल न पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार।

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागन जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागन साची जिस

कर्म कमाए सब दे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए ऐसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मनमुख रुने अपने।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साथ समाए। हर तब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर न कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा गुर सायर, सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे थिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मन मुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीरा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सो जी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोविंद, ना फिर मरे ना आवे जाए। पूरे गुरते साज समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं ना जाए। पूरे सतगुर दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए ना पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहां शब्द वसे तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर पर नाही कोए, जिसनो बक्से साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा निर्त करे बहु वाजे बजाए। यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ, दीवा बले न सो जी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसै मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवा काफी मैला तीजा, ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के पाने सतगुर मिले, सत सोजी होई। गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई। मैं सहुदाता एक है और नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई। रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है, पाई है गुर विचार। बिन नामे जम के बस है।

पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समरथ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब सृष्ट जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रह रहा कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा महला चौ

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम हीन कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा मेला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, गडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रव्या सब सांस ग्यासा रहाओ, नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनंत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ, हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुठा सिख देवे मेरे भाई, मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मेला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ। नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ले गुरमत बिकता। नाम बिना पुष्टि मोह अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा। हर हर हर जस जपे वड पागी, नानक गुरमत नाम।

तिन हथ कर कंत बजावे जोगी थोथर वाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जाने हर लावो मनुआ पेल। ऐसा मैला चौथा कब को पहले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई।

आए, आते हर अपरंपर करता, हर आते बोल बुलाए, से संत पले तुद पावे, जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वनज ले जाए।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया।

हर गुण गाइए, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हम एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिद पार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आपावरी मैला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग विरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई।

जैसे अल कमला दिन रह न सके तैसे मोय हर दिन रह न जाए। राज करण जगदीश सुर प्यारे मोय सरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कै मन अमद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

मैं प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहागन।

हर सेती और है समाए आपका मैला पंजवा। निज तगती सीलवंती नार रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह वसे सो ग्रह सो बावंता, गुरमुख पाई किने विरले जनता, सो करनी कामन गुरमिल हम पाई। जज काज परथाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ, टीचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सब पुरुष मनाया, गुर आनी कर में संसर्ग सुख पाया। बत्ती सुलखणी सत संतत पूत, आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप, इस पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतों की देर जेठानी, सब परवार है माए श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ, तन सो गृह जित प्रगति आए, जन नानक सुखे सुख विहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, फल थाके सिमरत वेद व्यास। जय बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोह।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैर वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चार सौ दे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया।

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल कीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद यो सौदा गुरमुख।

आए, निंदा करे सिर पार उठाए, माया मूठा चेके नहीं, पर में फूला बहुती राहे, बाहर पेक करे कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आत्म

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब पकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीसे, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा,

बस्तर भी पोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलख और बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

बिचता अस्त्र रख परे ते चान, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे

अब अंत ना जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा ते ए मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाले जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जाई रहाओ, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है।

कर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लोक जो सद ही संगी, कामना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, जो पावे त्यों कर कृतपाला। आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, कृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार।

नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कार्य आप संवारिया

से नए अफत मज्जन संत तुराए सब में जानो करता एक साध संगत निर बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरु दीनो दान आसा मेला तन्यवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त और अंत

दुत्तर अंध बिखम ए माया गुरु पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा

हर रस साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कछ छोट न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी होए निमाणी सेव

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण करे।

उठत सोवत जागत विसरना ही तू सांस गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पय कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करे चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अगद करे सास सास समारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत तंद अंद को जागे हर जन महामोनी मगन प्रेय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानत जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निधान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता।

गोविंद भजन कीमत है होरा, गर्मी मारी सात न मरी, नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, सत जोग ना पच

अपना छुपाया कूड कपट वंश निमुनिया दा बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्या उद्यम करत हो वै मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब पखाव।

मुक्ते सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निर्त नरक निवारे, नानक गुरु मुख जागे, आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस गुरकीनों के हर कुकर तिने लगाई रे राव बाज फूनिया छपरा सामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा कचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे कोई अजान कहे मैं जाना जानन हार न छाना रे कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यो प्रतारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काड लिए माँ पौजल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जा कै सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइए सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इक उतराखन हाय

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुम्हारी कृपा से पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा।

अगर के जाने ज्ञाना कूल चूक अपना बारिक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया काटिया रोग मां।

बाँ कोरते बाँ पकड़ गुड़ काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

निर्मल बरन बन्योरी, महामंत्र गुर हृदय बस्यो, अचरज नाम सुन्योरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा।

तब आप सिंगार सवारन हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुकाने हो रहा सकी सहेरी परम गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे सेज तरी आन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सुहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा।

चरिया सिर कनक छतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाय, यो स्थान गुरु ते पाय, राव दूजा आसा मेला पन्नवा। कर में सुख बार फुल सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जा तू चित आवे।

तेरा हुक्म बूझे सोई परवान, साथ सब जाता निशान, गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा मैला पंजवा, जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम दे हो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगा

कहो नानक नित इवै ते आई गत होवै संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन त्रैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये आठ पहर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास कई कल्याण दुख होवत नास अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अंदिन चीना आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चौकुंत माने।

सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला धन्यवास। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

के सूत परोई कट कट अंतर रविया सोई ओ पत परलो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आशा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई।

पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सियो मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पावना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म इहु सफल भया, कहु नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा। सत गुर अपना सद सदा समारे, गुर के चरण के संग चारे, जागरे मन जागन हारे, बिन हर अवर नाव सुकामा, चूठा मो मिथ्या पसारे रहाओ। गुर की बाणी से रंग लाए, गुर कृपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा नाही थाओ, गुर दाता गुर देवे नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप। आसा मेला पंजवा। आपे पेड़ विस्थारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पे खोए कै ओही, कट कट अंतर आपे सोई रहाओ। आपे सूर किरण विस्थार, सोई गुपत सोई आकार, सर गुण निर्गुण था पहनाओ, दो मिल एक कै कीनो ठाओ। कहो नानक गुरु परम को खोया, अनुज रूप सब नैन अलोया। आसा महला पंजवा। उक्त सियान किछु न जाना।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आसमान धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

जन इत उत कतेन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ताके संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया आसा मेला पंजवा जो सो प्रसन्न होयो प्रभु मेरा ता दुख परम कहो कैसे मेरा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी मोहि निर्गुण को लिहो उधारी रहाओ मिट गया दुख बिसारी चिंता फल पाया जब सतगुर मंता सोई सत सत है सोए सिमर सिमर रख कंठ परोए कहो नानक कहो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पन्यवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मेला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म का।

चरण निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कम कर नस गए विचारे, उचित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्स तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दी जय, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद कली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ, नाम दृढ़ाया सा

ओजन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब बिथाटी, ओस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

नाउस बंधन ना हम बांधे, नाउस तंदा ना हम तांदे, नाउस मैल ना हमको मैला, उस आनंद ता हम सदकेला, ना उस सोच ना हमको सोचा, ना उस लेप ना हमको पोचा, ना उस भूख ना हमको तृष्णा, जा उह निर्मल ता हम जतना, हम किछ नाही एक ओही, आगे पाछे को सोई, नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पांच कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए, पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान, सरई सुहागण जो प्रभु पाई, तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ, दासन दासी की पनहार, उनकी रेण बसे जी नाल, माथे पाग ता पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग, जाप ताप देवो सब ने मां, कर्म कर्म अर्पो सब हो मां, गर्भ मोह तज हो वो देन, उनके संग देखो प्रभ नैन, निमख निमख एही

चले संगारे, आपको कोई मिले न फूले, जिस कृपाल तिस साथ संकूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट कब तेरा तान, आशा महला पंजवा। उपत हो के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार, होए रहे सबकी पगछार, संत रह सुनो।

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरिए, नानक दर्श प्यास।

तिसे अराध मना बिनासे सगल रोग, राखनहार अपार राखे अगन माहे। शीतल हर हर नाम से

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौ।

पुरख बिराते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन, तो गुर मिल सब सुख लादे, कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

सारे साजन संत हमारे नीता बिन हर हर आनी तारे साध संग मिल।

दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन पन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे, ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग, आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए, धर्म राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिए कल युग उत्तमो जुगा माहे, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद, कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे कौन उप

मोकुटम बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन लालन नह ना नहीं।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना कारण करना एक है सोहना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना आशा मेला पंजवा हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाए ओह अगे अतोला प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मैला पंजवा अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ।

आया गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन मानी रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आसा मेला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रमसुआ, कहो नानक जिस सतगुर पेटिया, सो जन ने चलतिया। आसा मेला पंजवा, कर चौथा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। ओह निहो नवेला, अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ, जो प्रभ पावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे, प्रभ संग मिली जय, इहो मन दी जय,

विकार माया माद सोयो सूझ बूझ न आवे पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे लोग बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा निप्त बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया जिन कारज रहे ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आशा मैला पंजवा हर शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां हर हर मन प्यार हां गुर कहया सो चित धर हां हम स्यों तोर फेर हां ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बड़ पा गया मेरे मना रहाओ, संत पग तोये हा, दुर्मत खोये हा, दासे रेन होए हा, व्यापे दुख ना कोए हा, भगता शरण पर

उत्तर अवघट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सेवा सुरत विपूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार

पूजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुखदा सा रहा, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय

नदर करे संजोग मिलाए। रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई। सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला। अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला। त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे। शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म विरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नर चार सुमावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग सो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे

हुक्मो वरतै जो तिस पावै गुरबिन पूरा कोई न पावै। बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान। जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना। बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सोपीरा राम नाम दिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द।

मिले तह जाऊं। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, ना मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता, अमृत नाम बसे।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंध न पाए।

तिन गल सिलका पाया टुटन मोतसरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोह बंके, ऐथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंगोली हरमा।

रामै तेग वगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुराणी, इकना पेरण सिर खुर पाटे।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

अंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम त्याए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुग तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिये हर्षो बनियाई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले, जमण मरना आखी है तिन करते किया, आप गवाया मर रहे फिर मरना किया, सारी कार कमावनी तुरकी फुरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन वसै।

पर खाए गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए अड़प दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई।

जिस पाप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया।

नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जां तुद पाणिया जो लग जियो प्राण सच दियाई है लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दरगे नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख कर

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रहा।

हरि ताके रूप न जाहि लखणे क्या कर आस विचारे तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने कर्म होवे ता परम पद पाये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाने नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जाने जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे।

सोई सतगुरु नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मनवसाए, इहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्म बूझे सदा सुख पाए, आप करे तह आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुरु ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरुमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरुमुख पगत सला है अंतर शब्द अपारा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरुमुख हो मैं मारी है मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करी, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, बिन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आपको वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओ नानो बख्शियन अंतर।

करमे पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या है वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, कर दर छोड़े अपना पर कर

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखी है आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमति साला ही है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई। गुरमति कर चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई। नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई। नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई। जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई। नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमति नाम बुझाई। नानक सब किछ नाम है।

इक्का बोले नानवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों करवस आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिंगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जत पत सब दे होए बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हौ हौ कर दी सब फिरे बिन सब दे हौ न जाए नानक नाम रते तिन हौ मैं गई सच्चे रहे समाए आसा मैला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए एथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर के पै पाए जोरते सिफती सत समाओ पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

हथ संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए। गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए। यू मन दे।

हथ निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हों मैं आप दुआए, फिर सेती अंग दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए, नानक जे सुख लोड़।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती दे।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखुआयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नहीं चल हर को नाओ, कर मित्राई साध चो नहीं चल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

जुग जुग रही समाए। जो तुद पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारा।

दिन का सफल भया, मन काहे भूले मूड़ मना, जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ। ईवड़ी आद पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई, एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख ना होई। उड़े उपमाता की जय, जाका अंत न पाए।

पढ़िया पंडित आप थिया छछे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होवा परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होवा तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी पीक पवया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं।

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ होआ सो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाणे रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

सब बख्श लिया। हा है हर कथा बूझ तू मूड़े, ता सदा सुख होई। मन मुख पड़े तेता दुख लागे, विन सत

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै

जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुरु बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रत्न कनेरे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिख्याता।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरुमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत्व विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वड्याई। नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग।

कर्म विधाता दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा के रे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

काचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्धिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

पहला हम घरे साचा सोहेला साचे सबद सुहाया राम तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफल्यो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली हर वर न पाए राम, कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन

ना आवे। भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे।

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक।

सतगुरु मिले दसवां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे, जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है, सच्चे रहा समाए, त्यों कहे नानक सतगुरु मिले, तावत थमया निज कर वस्याए। मन

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

सब संसार दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुरु बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी। मन

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप ना रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाए, मन तन शीतल सिंगार सब होआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया,

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए, अस्थिर होवे जन्म मरण।

हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत।

तुर लिख पाए जियो, हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, प्रम चूका आमन जान जियो।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ

पदार्थ हर हर कृपार्थ शोभा गुरुमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई हर हर लिव लाई हर नाम सिखा।

कल जुग हर किया पग त्रै किस किया पग चौथा चिकै टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जीड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करण।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई, हर दरगे पैदे जान जियो। हर दरगे पैदे हर नामे सीधे, हर नामे ते सुख पाया। जन्म मरण दोवें दुख में ते, हर रामे नाम समाया। हर जन प्रभ रल एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरण लिखाया।

समेला पंजवा छंत कर कहला अणगो अणग घना मैं सो प्रभु जी ठाराम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृह वस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभु नैनी दीठा।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइये मैल गवाइये जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभु सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभु पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर सेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे टरे। खिन नाहे टरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना धीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अकलाये चित मुरारी। मान की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है। कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय। मन लाले दी जय कोप करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे। कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विष्णु अवतार शंकर जटातार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय।

नाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुपत प्रगट जा को अराधे पौन पानी दिन सुरात। नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जा को जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए सांग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवा तेती न जाय गनी। अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीस साधे तर चरनी। ऐसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद नह अलसाइए पेट साधु संग जमपुर नह जाइए। दुख दर्द न कहो व्याप नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याय सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए। नाम पयम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाइए। पावन पतित पुनीत नाम ने

सैंग सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नानक पयम पै चरण जम पै पावन पथित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुत हरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तय तय प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस मा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै पवित वचल हर वेद आप बनाया आशा मैला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जमकाल नानक मन तन सुखी हुए अंते मिले गोपाल संत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसे जोबन बदे जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत ना

से भोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो राख महारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय पौन नाम तारी उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर।

बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही नेपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आवन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा पट पट वासी आप विरले किने लया जय कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपुन्नी कुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे।

श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़िए अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चार मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग सारा शुभ गणिया बिन हंत नानक मिले श्री पार सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुण गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभु पाने बिन हंस नानक रंग रा

सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बपड़े जितया।

दूते दहन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज डीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई ने अंत जाई पाया, बिन वंश नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया, नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय तरम करे दूत तय पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे, जय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण, निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वस जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर तार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी बहुर जमना उपाड़ा।

संग देखे करणहारा काय पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पज साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते। बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद नि संगे कुल समूह आतारी है। शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न कीचई प्रभ परखन हारा, कूड़ कपट कमाऊ

जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा बिन वंस नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर कंदौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक बिन कछ

सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रेय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओहो बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सत ताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन सन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमह संत।

सुंदरतम ज्ञान सुंदरतम ज्ञान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतन्याओ वड्डी वड्याई जाने चलसाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आख करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाव ना पाएं कूड़िया मौका ले दो जुक चा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार

सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान, कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान, कुदरत पाउन पानी बैसंतर कुदरत करती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नारी पाक, नार कुक में अंदर वेख है वर्ते ताको ताक पौड़ी, आपी ने पोट पोट कह हो पसमर पौर सिदाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कप चलाया, अग्गै करनी कीर्त वाची है बह लेखा कर समझाया, पाऊ ना होवी पाऊ दई हुन सुनिए क्या रू आया, मन अंदे जन्म गवाया श्लोक महला पहला, पैर विच पाउन वह सदवाओ पैर विच चलने लख दरियाओ, पैर विच अगन कटै वे गार पैर विच तरती दबी पार, पैर विच इंद फिरै सिर पार पैर विच राजा तरम द्वार, पैर विच सूरज पैर विच चंद को करोड़ी चलतनां, पैर विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैर विच आडाणे आकाश, पैर विच जोध महाबल सूर पैर विच आवे जावे पूर, सगले आपो लिखिया सब लेख, नानक निर्भव निरंकार सचेत महला पहला, नानक

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आलप ताल लटकिया के मुंडड़े लटकिया के हार जित तन पाये नाम का सेतन होवे चार ज्ञान न गली टूंडी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाये और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करे जे आपनी ता मदरी सतगुरु पाया एहो जियो बहुते जन्म क्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चन सूरज अवतार सगली तरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नाक मुझसे ज्ञान होनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान

नरक ना जाइए, जियो फ्रेंड सब तिसदा देखा जाए आप गवाइए, जे लोड है चंगा आपना कर कुन्हु नीच सदाइए, जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए, तो रहना परिये पाइए। श्लोक महला पहला, मुसलमाना सिर्फ शरीयत पर पढ़ करें विचार, बंदे से जे कोह विच बंदी वेखन को दीदार, हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार, जोगी सुनते आउन जे ते अलख नाम करतार, सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोष उपजय देने के विचार, दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार, चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार, एक होदा खाए चले ऐसाओ तिना बेकाई कार, जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार, ओए जे आखे सोतू है जाने तिना बे तेरी सार, नानक पगता पुपसलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार। महला पहला, मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार, कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे संचित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हो विच आया हो विच गया, हो विच जमया हो विच मोआ, हो विच दिता हो विच लया, हो विच खटिया हो विच गया, हो विच सत्यार कूड़ियार, हो विच पाप पुन विचार, हो विच नरक सुरग अवतार, हो विच हसे हो विच रोवे, हो विच परिये हो विच तोवे, हो विच जाति जिन सीखोवे, हो विच मूर्ख हो विच सियाना, मोख मुक्त की सार न जाना, हो विच माया हो विच छाया, हो मैं कर कर जंतु पाया, हो मैं बूझे तांदर सूझे, ज्ञान में होना कब तक लूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेख, जिहा वेख है तिहा वेख। महला दूजा, हो मैं एहा जात है हो मैं कर्म कमाए, हो मैं एही बंदना फिर जो नहीं पाए, हो मैं किथों उपजे किथों जम ए जाए, हो मैं एहो हुक्म है पे है किस फिराए, हाँ में दीर्घ रोग है दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए, नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए पौड़ी, सेव की ती संतोखी जिन्नी सच्चो सत्य आया, ओनी मंदे पैर न रखियो कर शुक्र कर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बस्ती सी अगला नित देवे चने सवाया, वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तत्ता मेगा खेता, दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा, अंड जेर उत्पुजा खानी सेत जहां, सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंत उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता, सो करता चिंता करे जिनु पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग, नानक सच्चे नाम बिन क्या किता क्या पग। महला पहला, लख ने किया चंगिया लख पुन्ना प्रवान, लख तप पर तीर्था सहज योग बेबान, लख सूरतन संग्राम रंग में चुते प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया मन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी, सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते बर्फ बर्फ, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आर

नानक वखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सत्ता पर जानिए जार दस चाहोए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सत्ता पर जानिए जा फल तरे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सत्ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तर्क पाया साध के विच दे करता बियो। सत्ता पर जानिए जा सिख सकीले, दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सच्चा

पाप कड्डे कोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे

सुत होए, नानक पाहे बारा पूरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावता होए, नानक पवती जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दे राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दा।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार करमी तर्म करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला गदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारियां करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेखी जगत उपाया कितना नो तू मेल लै इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया।

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत्य ओमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गै रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गै रथवाओ, द्वापर रथ पपे का सत अग्गै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत धीरज अत मुच ओज आवे आस पर जाहे निराशे कित फल फिक्के फुल बकबके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए ताका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादंग सिलकूज बगल समादंग मुक्त ऊट बेपूखन सारंग त्रैपाल से हाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पाऊं दे राय पीड़े अग्गे जावना नंगा दोजक चालिया तां जिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोष सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे कर...

नाल तक पाओ कतिए बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुटिया पीसर पाईए होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला नाई मने पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाईए तग न टूटे सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुप होवे निदारी तग न तैरी तग न अखी तग न जेवा तग न अखी वे तगा आपे वतै वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसने का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर कर न जाई तोती टिक्का तै जपमाली तान मलेच्छा खाई अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले आए जाए तरंगा महला पहला मानस खाने करे निवाज चुरी वगाने तिन गलता

दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का तेड़ पोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्तर पहर होवे प्रवान मलेख तान ले पूजन पुराण अपरख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत भिटे वे मत भिटे यो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देवडे आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सुरे सुरतंगे लाएंगा नगर उपठी जे करे सुल्ताना का उतर आएंगा दर मंगन पिख ना पाएंगा श्लोक महला पहला जे मुहा का घर मुहे कर मुहे पितरी दे अग्गे वस्या

मैला। मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परक्रिया पर अनुरूप, कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए, नारखंसा आदमी बद्दे जमपुर जाए। मैला पैला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म।

नानका जो तेल पौड़ी आपते ही करना कियो कल आपते ही सहतारी है देखें पिता।

परमा साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इकना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार, नान

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत ना मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

लुंजत मुंजत मोन जटा तर अंक कऊ मरना तांते सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तौ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तौ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहूं ना उबरना कहो कबीर यो।

चलाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी ते कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी।

रे बौरे तुम करी न रखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी माँ पिता को काको कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए त्रिया रोवे हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो कैसा गुर कह पाई, इस बंदे से जुल्म हो।

एक तो के संत सुनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोव ना

कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत तह ले गयो, मेरी रासत मुग्ध फिरे, चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर कन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अन तन कछुए लह न गयो, आई तलब गोपाल।

आई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। सू में तन रासन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल चतारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बाकत ही पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ बिचारे। कलमा अकल है जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे, तब तो दीन पछाने। खसम पछान तरस कर जी में मार मनी कर फीकी, आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरी की। माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना। आशा गगन नगर

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते खाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दशा बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन दशियले गुरु प्रसाद जीठी रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या करो भाई जिन सास पछाण्या तिन सर्पनी खाई सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा।

बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेहि रावण कर खबर न पाई, क्या मांगो किछ फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ एक लख फूट सवा लख नाती, तेहि रावण कर दिया नवाती, चंद सूरज जाके तपतर सोई, वैसंतर जाके कपड़े तोई, गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रह न कटू जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। आशा पहला

रहाया। दस मास माता उधर राख्या, बहुर लागी माया। प्राणी काहे को लोभ लागे, रकम जन्म खोया। पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाहीं बोया। रहाओ बारिक ते बिर्ग पया, होना सो होया। जा जम आए चोट पकड़े, तबहे काहे रोया। जीवने की आस तरहे जम निहारे सासा। बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती। राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती। गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा। रहाओ नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा। राम राय सो दूलो पाया, असबद पाव हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट के तीस उजाना। कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरुष एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे। सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिह जरोरे। मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं पेखो, ये दुख कासो कहो रे। रहाओ बाप सावका करे लड़ाई, माया सद मतवारी। बड़े भाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जय बा विष्णु नैन नारायण, हृदय बसे गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा। रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे। कब हूँ न पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं काशीक दुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना। तुम तो जाचे कूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानं। साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधानं। बाबा

कोई आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे काजी साहिब एक तो ही में तेरा सोच विचार न देखे खबर न करे दी।

गुप्ता ही रा प्रगट पयो जब गुरुदम दिया दिखाई आसा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह पे है बुरी अब की स्वरूप सुझा

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया ना हो ले राखियो राम जनिया ना हो इन मुंडियन मेरा कर कुंडरावा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की यह बढ़ाई।

प्रतीत न होई आशा। कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग अंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरो ताना। तरण आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात इक कीनी, तह कांती मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कारग है तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आशा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओई नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक से

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन

त्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है पांची के तक आस, मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल सास अदग लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण, सत गुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम मां जय दी जय देवा देव। रहाओ संत आचरण संत चो मार्गे।

तन अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभान।

लालच बिख काम लुगद राता मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुंते पीत बदी अनपांती जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे दिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ज्ञान मान मन एक मय प्रेम तगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भय। ज्योत समाए समानी जाके अचली प्रभ पहचानिया तन्ने तन पाया तरनी तर मिल जन संत।

जी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुत कारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

भिन मन होर मुख होर से पांडे तकिया रखे इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते कोई पार्थिये रहा आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से पर्वतगार अपार अगम्य।

आकिन कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए तुम ना आइए ऊंची दुनिया लग ना आप वंजाइए।

कीचे नाम त्याय बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तो वह कोई झूठ लह जियो।

रहाओ। रव सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मनमुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दो लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुर चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

ताए जित कम हर विसरै दूजे लगै जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेविए गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर से चित गहर है जरा का पौ न हो गई जीवन पदवी पाए रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाना चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला की जा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहाँ सेव बनी जियो राव हर मेरा सुमृत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधक हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साथ अंत हो सखाई हर दिन होर रास पूरी है चल दिया नाल न जाई हर मेरा तन मेरे साथ चाले जहाँ हो जाऊं तह जाई सो टूठा जो टूठे लागे सूठे कर्म

जाओ सतगुरु मिले हर मन वसै सहजे रहे समाए रहाओ जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैरागे ते हर पाए हर सू रहे समाए शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रह करे त्रिभुवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

अंत गया पछताए। त्यो मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अब तक तीर्थ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निदान पंडित सुन शिक्षा से। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई रहा। सतगुरु मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो तिस

संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पाघहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास, गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याये सबको दान दे प्रभ ओ है, मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है, जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है, दुर्मत पागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है, अमृत सारे सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है, नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदा भगत।

तुम काम सतगुरु गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड़ पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुरु सतपुर

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। होवे दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव दिहाई, तन तन सहवास कहे।

तू पाए ता कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहा जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

हारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहा। शासक वेद सिमरत सब सो दे सब एका बात पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। असठ मज्जन कर स्नाना प्रम आए थर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेष बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो।

कहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

अमृत पाई आश्चर्य हर सोकार ना वो खर्चो कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

प्रीत कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास।

कहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर ऊठ सिदास होए।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथिया लोभ लभी, गुरपुर दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंद सुत पाई, संग बनता रथ हसया, जब अंति

चलने नाही एक पैरे। नाम तन नाम सुख राजा नाम कुटुंब सहाय, नाम संपत गुरु नानक को दी ओ मरे ना आवे।

नाम निधान सतगुरु दृढ़ आया, दिल सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, भय कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

सगल करत नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय। जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुध पाई। हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाद कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रखा नानक को प्रभ पूर रहे है एको जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अवै दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आराधो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हथीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो।

मुन योगी शास्त्र के कहावत सब चीने बस अपने ही तीन देव अर कोट तेती सा तिनकी हैरत कछ न रही।

कई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहू नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी महला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिनका बल है थोरा, अनित रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा, ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनसो सगल ने होरा, गुजरी महला पंजवा। आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ से की रंग लाए, मन को इह उपदेश।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सला।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास तुमरो उदरस आखी फोर। गुजी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जो है न साके मल मल तो वे पाए। अब मोह आए पर्यो शरण आए गोज पाव को बहुत प्रजा रहे।

0: चरण कमल संगराज सगल जीव जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करके तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे किस कहा करे संसार। गुजरी महला पन्नवा
1: जल की तेज सवारी आप
0: हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

अब चल नीव करी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाए गुजरी मेला पंजवा कबहू हर्षो चीत ना लायो कंदा करत बिहानी औदे गुण निज नाम न गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनक जुगत कर कायो बिसरत प्रभ केते दुख गनिये महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी मेला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आ गए तेक कर कृपा गोविंद दिया गुरु ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवाल।

में मिटे सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत वीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दया

कलेश मिटे तै परमा निर्मल गुण प्रभु गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे पाग लागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पह

सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला, सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला। सुन सुखवंते ना

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तचियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख हो।

जल थल तरण जगन तह नाही आप आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्ण महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दिन दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि

चुक लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर भगत ना।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुर वात हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा। हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे सहज हरी, बिन हर नाम बिरथा जग जीवन, हर बिन नेफल नेत करी।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ